थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: राम राम रघुनंदन राम राम
1: श्री राम राम रघुनंदन राम राम
0: श्री राम राम भरताग्रज राम राम
1: श्री राम राम भरताग्रज राम राम
0: श्री राम राम रणकर्कश राम राम
1: श्री राम राम रणकर्कश राम राम
0: श्री राम राम शरणं भव राम राम
1: श्री राम राम शरणं भव राम राम
0: श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता रामचंद्रः।

0: రామచంద్రోదయాలుర్
1: సర్వస్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
0: నాణ్యం జానేనైవ జానేన జానే
1: నాణ్యం జానేనైవ జానేన జానే.
2: రామరక్ష స్తోత్ర పఠనం అభవత్. आज का संस्कृत गीत आपको कैसा लगा जरूर बताइए. इस गीत में भारत देश का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है. आप अब जो भी संस्कृत सीख गए हैं ना, उसके सहारे गानों का अर्थ भी समझते होंगे. तो गाने का अर्थ क्या है, कौन से शब्द आप जान गए, कौन से शब्द कठिन लगते हैं, जो भी आपके मन आता है जरूर बताइए. कल का प्रश्न था, क्या आप किसी के अच्छे दोस्त हैं? मित्रों ने प्रतिक्रिया भेजी है, उन्होंने बताया है उनको यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे दोस्तों ने बताया है कि वो अच्छे दोस्त हैं. अमृता जी और शैलेश जी ने बहुत सुंदर उत्तर भेजे हैं. धन्यवाद. आप

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केएल वेणुधुनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: कठोरता का महत्व. जीवन में अनेक घटनाएं अचानक होती है, जैसे अपघात, भूकंप, बाढ़, जिसमें प्रकृति का तांडव नृत्य कईयों के जीवन ही लील लेता है. वे विभीषिका इतनी भयानक होती है कि देखने वाले का दिल ही दहल उठता है. कभी कभी तो देखने वाला दम तोड़ देता है. अतः भयानक बात को देखना हो तो दिल कोमल और कमजोर नहीं, किंतु कठोर यानी मजबूत होना चाहिए. कठोरता भी एक गुण है जो भयानक घटनाओं में मन बुद्धि को स्थिर और अचल अडोल रखने में मदद करता है. कठोरता अर्थात वचन निभाने में दृढ़ता दिखाना और अपने इरादों को पूरा करने में अटल रहना, मन के विचारों को स्थिर बनाए रखना, आचरण में भ्रष्टता को त्यागने के लिए कड़ापन दिखाना भी कठोरता है. किसी भी महान व श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठोरता बहुत जरूरी है. जैसे संगठन व समुदाय में अनुशासन का पालन करना हो, वहां नियम पालन कराने में सख्ती से पेश आना जरूरी हो जाता है. वास्तव में यह नियम पालन में सख्ती बरतना ही तो कठोरता है. अनुशासन पालन में कोमलता से तो काम बिगड़ जाता है, लेकिन एक बिगड़े व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया में कठोरता एक महान सुधारक का काम करती है. पत्थर खुद की कठोरता के कारण मूर्तिकार के हाथों आकार ले वर्षों तक पूजा जाता है. किले व भव्य इमारतों के नींव में भी कठोर शिलाएं डाली जाती है. कठोरता कोई अवगुण नहीं है, लेकिन कठोरता इंद्रियों को वश करने के लिए उत्तम नियंत्रक है. नियंत्रक डॉक्टर व चिकित्सक रोगी के रोग खत्म करने के लिए अपने हृदय को कठोर बनाता है, तभी तो वो रोगी के रोगग्रस्त अंग की शल्य चिकित्सा कर उसे शरीर से उस शरीर के रोगग्रस्त अंग को काट उससे अलग कर देता है. ऐसे ही दुर्गुणों से मुक्ति पाने में कठोरता बहुत जरूरी है. स्वातंत्र वीर सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु ऐसे तमाम सेनानियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कोमल हृदय को भी कठोर बनाया और मातृभूमि को आजाद करने हेतु अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए. अतः कठोरता को अपनाइए और नाजुक कोमल स्वभाव से मुक्ति पाइए. ऐसी हमारी

0: 2025-26 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में

0: शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा 2000

0: रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसुपे।

0: Shangi.
1: Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation द्वारा संचालित Community Radio Association द्वारा निर्मित
2: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

0: करतायत, तर लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करते. तुम्ही ऐकत राहा वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसो.
1: हॅलो एव्हरीवन, आय एम कविता बागेवाडी, बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन बेळगावी, कर्नाटक. आय डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम वनिता विद्यालय इंग्लिश मीडियम हायस्कूल, कम्प्लिटेड माय PUC इन सायन्स अँड लेटर अर्न माय BBA अँड MBA डिग्रीज. लाईफ देन टूक मी ऑन अ न्यू पाथ. टुडे आय एम अ होम मेकर अँड अ प्राऊड स्मॉल बिझनेस ओनर. आय रन निटर्स पॅराडाईज वेअर आय क्रोशे अँड नेट हँडमेड क्रिएशन्स लाईक बेबी अपरेल, फॅन्सी बॅग्स, स्कार्फ्स अँड होम डेकोर आयटम्स. ईच पीस I make carries a bit of my love for creativity and patience. Along with crafting, I have also stepped into writing. I write poems in Hindi, English, Kannada and Marathi, sometimes on demand and sometimes straight from the heart. I have even written short stories, poems for children, which I truly enjoy. I am also a mom to a wonderful 6-year-old boy who is my constant source of inspiration and motivation. I love spending time with my family and friends, and I feel grateful for their support through all my ups and downs. I'm really happy to be here today to share my journey, my passion, and the little joys that keep me going. Thank you. Today's poem is on Nana Nani. Nana Nani Dada Dadi Rishton ke ye hai naam suhane, par phir bhi kyun yahan lagte hai ab hame pure anjane. Nani ke nuske, dadi ki gutti, खाऊ खिलौने से भरी उनकी पुट्टी, जाने कहाँ वह खो गए, क्यों हमसे वह रूठ गए. नाना की शरारत, दादा की मस्ती, हाथी घोड़े की बनी थी सवारी, थके हारे अब भूल गए, सवारी बनना छोड़ दिए. आज लेकिन यह मौका आया है, अपने संग आपको भी खेल खिलाना है. हमसे आपके लिए यह तोहफा छोटा, नाती पोते के संग मनाए यह त्योहार बढ़ा. दूध से मलाई है सबको प्यारी, आज ग्रैंड पेरेंट्स के जश्न की है तैयारी. भूल जाए हम मम्मी पापा, खेल खिलाए नानी दादा, ये दिन तो बहाना है, छोटों से बड़ों को मिलाना है. एक पीढ़ी के सीख बड़ी, छोटे पीढ़ी को देनी पड़ी. ग्रैंड पेरेंट्स का दिन है आया, धन्यवाद कहना हमें है भाया. देना हमें आशीर्वाद, छोटे हैं हम, मांगे यही सौगात. हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे. अगली कविता है पिता के लिए. पिता हमारे जीवन में एक ऐसा आधार स्तंभ माना गया है कि हमारे साथ अगर पिता है तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं. तो फादर्स डे के दिन मैंने ये पिता के लिए अपने लिखी हुई छोटी सी कविता है. पिता, पिता के प्यार की छाँव में जीवन की राह सुहानी है, उनकी दुलार की छाँव में सजी हर एक कहानी है. उनके साये में बीता हर दिन एक त्योहार है, सपनों की उड़ान को मिला उनका आभार है. मुश्किलों में वो ढाल बने, खुशी में होठों से हंसी, उनकी आंखों में देखी मैंने जीवन की सच्ची खुशी. बचपन की गलियों से लेकर जवानी की राहों तक उनके संग बिताए लम्हे मैं सुकून के हर पल तक. पिता आप हैं मेरा हौसला, मेरी ताकत, मेरा गर्व, आपकी ममता और प्यार में बसा है मेरा सर्वस्व. धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, आपकी हर सीख और प्यार को दिल में हम बसाते हैं. फादर्स डे पर यही दुआ, आपका साया सदा बना रहे, खुशियों की बारिश हो हर दिन, आपका सजीव बना रहे. हम प्यार की खोज में दौड़ते रहते हैं और जब हमें कोई प्यार करने वाला मिलता है, वो किसी भी रूप में हो, तो उसे हम हमेशा एक गिफ्ट, एक तोहफा मानकर चलते हैं जो हमें भगवान ने दिया है. उसी प्यार की सौगात पे ये कविता है. शीर्षक है प्यार की सौगात. हाथों में हाथ लेकर चलना सबको पसंद है, पर कभी तुम आगे और मैं पीछे होकर चलने में और ही मजा है. दोनों हम एक दूसरे के लिए बराबर है, कभी तुम आगे बढ़कर देखो, कभी मुझे आगे बढ़ने दो, और ही मजा है. सिक्के के दो पहलू है हम दोनों, तुम्हारे बिना मैं, मेरे बिना तुम रहो तो जिंदगी सजा है. उतार चढ़ाव बहुत है हमारे प्यार के सफर में, पर कभी तुम ऊपर चढ़ जाओ और मुझे हाथ बढ़ाकर ऊपर उठा लो तो और ही मजा है. धन्यवाद. So love is about accepting all the gives and takes, ups and downs, success and failures. But with you by my side, I carry a swag to say, hey problem, I don't fear you. My strength and love is always by my side. Thank you. दो इंसान, उनकी बातें हमेशा उनके बीच में ही होती है. थोड़ी नोक जोक, थोड़ा

तट था शीतल था उसका पानी, यमुना का तट था शीतल था उसका पानी, खेल रहे थे कृष्ण कन्हैया संग ग्वाले और राधा रानी, गेंद उछाल के हंसते भागते दौड़ रहे थे सब गोपाल, घास का रस पीती गैया और सुनाती थी प्रेम की ताल, पर जिस जल को अमृत कहते थे उसमें आज क्यों क्लेश है, वही जीव जल पीकर मुरझा जाता, पशु पक्षी और ग्वाल बाला हर और विशेष है, कान्हा ने सुना था एक भयंकर सर्प है जिसने धोखा दिया, यमुना का जल बना दिया विस्मय, सब जीवन को डरा दिया, उस सर्प का नाम था कालिया, मुख थे पांच और विशाल थी काया, आया था वो वृंदावन में लेकर अहंकार और बैर बेहाल, तभी अचानक खेल रुका, गेंद जा पहुंची थी यमुना में, चुप हो गए सब बालक, डर समाया मन मन में, ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए, बोले कान्हा वापस चलो, पर कान्हा मुस्काए धीरे से, बोले क्यों डरते हो भला, गेंद मैंने फेंकी है वापस भी मैं ही लाऊंगा, इतना कहकर नटखट कान्हा यमुना में ही कूद गया, ढूंढ रहा था गेंद को कान्हा, पर मिलती कैसे उसे वो, कालिया ने छुपा रखा था और पास बुलाया कान्हा को, कान्हा मन ही मन मुस्काए, भले कालिया मैं आऊंगा गेंद लेकर वापस जाऊंगा, कालिया क्रोधित होकर बोला अबोध बालक तू मेरा क्या कर लेगा, अगर चाहिए गेंद तो युद्ध मुझसे करना होगा, जीत गया तो गेंद तेरी, हार गया तो तू मेरा भोजन होगा, कान्हा फिर मधुर हंसे और चुनौती स्वीकार की, क्षण भर में ही कूद पड़े सर्प पर जैसे बिजली प्रहार की, कालिया उगलने लगा विष, पर हुई लीला अनोखी, कान्हा ने उनके फनों

0: हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक और जिंदाबाद होंगे। अगर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप ट्यून कर चुके हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त यानी कि RJ आयुष। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको सुनकर आप भी एकदम नॉस्टैल्जिया मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि हम आज बात करेंगे द हार्ट टेल्स ऑफ फ्रेंडशिप फॉल्स ऑन द रोड्स, यानी फ्रेंड्स के रोड ट्रिप्स पे। तो आज के इस एपिसोड को हमने नाम दिया है जर्निंग टुगेदर टेल्स ऑफ फ्रेंडशिप ऑन द रोड। तो हो जाइए तैयार, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय योर फेवरेट शो विथ योर फेवरेट होस्ट RJ आयुष ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

हेलो एंड वेलकम बैक वन मोर टाइम टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स। और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ बिताई गई उन जर्नीज के बारे में जिन्हें सुनकर आप एकदम नॉस्टैल्जिक मोड में जाने वाले हैं। अवर जर्नी बिगिंस विद द एसेंस ऑफ फ्रेंच ट्रिप्स। दोस्तों ऐसी ट्रिप्स पर डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती, जर्नी मैटर करती है। वो अनुभव या एक्सपीरियंस मैटर करता है, दैट मेक्स द जर्नी अनफॉरगेटेबल। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा से लेकर भैया बस हमसे ड्राइविंग आज नहीं हो पा रही है तक के पूरे दिन के मजे होते हैं। आप तो वो जानते ही होंगे क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ये गुजरा हो। वो एक दूसरे की टांग खींचना, और सारे दोस्तों में एक दोस्त ऐसा भी होता है भैया जिसकी टांग सबसे ज्यादा खींची जाती है। फ्रेंड्स क्रिएट अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ मेमोरीज दैट बाइंड देम टुगेदर। हर फ्रेंड्स ट्रिप में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप शायद इससे रिलेट कर पाए। पहला कैरेक्टर ऐसा होता है कि भैया ट्रिप प्लानर, एक दोस्त जो कि ट्रिप प्लान करता है और उसका सारा भार उसके मैनेजमेंट का कि कहां से कहां जाना है, फंड्स क्या है, उसी के ऊपर होता है। एक हमारा लवर दोस्त जो पूरी ट्रिप पर बस अपनी गर्लफ्रेंड से एकदम चिपका हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं अबे बस कर यार, नहा रहा है वो भी बताएगा क्या। और फिर आता है वो दोस्त जिसके पास कभी पैसे नहीं होते और हमसे बस यही कहता है कि यार आज तू दे दे, मैं जल्दी तुझे लौटा दूंगा। और एक सबसे शांत दोस्त जिसकी सबसे ज्यादा टांग खींची जाती है। लेकिन दोस्त कैसे भी हो, वो आपके सुखों को और खुशियों को एक माध्यम बन जाते हैं, उनका एक जरिया बन जाते हैं। आप बताइए क्या आपकी ट्रिप में भी ऐसे कैरेक्टर्स थे? तब तक मैं सुनाऊंगा आपको कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स, तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 के ई कनसु विद आरजे आयुष। दोस्तों, जितनी ट्रिप मजेदार होती है उतने ही चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। फ्रॉम मिस्ड कनेक्शंस टू द लैंग्वेज बैरियर्स, एवरी ऑब्स्टिकल्स बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंड्स टू शाइन। कभी कभी तो रास्ते भटकने का भी एक अलग मजा होता है। और फिर घोस्ट स्टोरीज को कैसे भूला जा सकता है, जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे ढलता जाता है, रात होते जाती है, वैसे वैसे घोस्ट स्टोरीज थोड़ी थोड़ी इंटेंस होती जाती है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। देखिए, भड़ती सबकी है लेकिन शेर सबको बनना होता है। मुझे पता है आप लोग अभी मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। और फिर चैलेंजेस को फेस करके पार कर लेना भी एक अलग तरीके का सुकून देता है और मजा देता है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि गोवा की ट्रिप कैंसिल होते होते एक दिन बन ही जाती है, फिर वो लोकेशन कोई भी हो सकती है। पहला चैलेंज ये होता है कि सबको मनाया कैसे जाए। यही चैलेंज सब लोग ज्यादातर फेस करते हैं और रोड ट्रिप्स बनते बनते रह जाती है। क्या आपने भी फेस किया ये चैलेंजेस? ऑफ कोर्स किए ही होंगे। चलिए, इन्हीं यादों के साथ सुनाते हैं आपको कुछ जबरदस्त गाने ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

क्या बात है दोस्तों, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन रेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसिव। दोस्तों फ्रेंड्स ट्रिप्स में एक और चीज होती है जो मेमोरीज क्रिएट करती है और वो है स्पॉन्टेनिटी। इट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट एड्स अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट्स। जो प्लान्स में सडन चेंज होते हैं या और कोई डिसीजन जो तुरंत चेंज होते हैं, वही यादें बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो अगर ट्रिप नॉर्मल जाएगी और उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी तो फिर आपको याद करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे कुछ सालों पहले एक सोलो ट्रिप प्लान करी थी, उसमें मैं हिमाचल प्रदेश गया था और मेरा फ्लाइट से जाना ऑलमोस्ट फिक्स था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी कारण से वो हो नहीं पाया और मुझे ट्रेन से जाना पड़ा। और उसी चेंज ऑफ डिसीजन की वजह से आई मेट सो मेनी गुड फ्रेंड्स एंड विटनेस सच एन अमेजिंग ट्रेन जर्नी विद सुपर्ब व्यू। साथ ही जो ट्रेन की घोस्ट स्टोरीज थी भैया, उसके तो क्या ही कहने, एकदम फट जाती थी। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आ रहा होगा और बेहतर बनाते हुए इस एपिसोड को मैं आपको सुनाऊंगा कुछ जबरदस्त गाने। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसु विद RJ आयुष।

हेलो वेलकम बैक पीपल, आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु और मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूं। और आपको मैं बता दूं, वेनु ध्वनि बेलगम का एक सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन भी है। तो भैया सुनते रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि। दोस्तों कोई भी ट्रिप में चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाफ्टर ट्रूली ट्रांसेंड्स दैट बाउंड्रीज एंड इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्रेंड्स ट्रिप्स। और जितना हम हंसते हैं उतना ही हम करीब आते जाते हैं और वो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। वो यादें जब भी हम याद करते हैं, आज भी हमारे चेहरे पर वो मुस्कान यानी स्माइल आ जाती है। ऐसे कई सारी यादें होंगी आपके पास जो आप कभी ना कभी याद करके इमोशनल भी होते हैं और हंसते भी होते होंगे। दोस्त हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, अगर आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं तो फिर कर लीजिए एक ट्रिप और प्लान। तब तक मैं आपको सुनाऊंगा कुछ सुपर हिट सॉन्ग्स। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों की यारी, उनकी यादें और वो सुहावने सफर की, जिसको हम कहते हैं #thefriendstrips। दोस्तों आजकल तो फ्रेंड्स ट्रिप्स का नाम एकदम नया हो गया है, बदल गया है, जिसमें लोग शादी से पहले एक बैचलर्स पार्टी पे जाते हैं। आपने भी ये नाम बहुत फ्रीक्वेंट सुना होगा क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। तो बैचलर्स ट्रिप का मैं आपको बेसिकली मतलब समझाता हूँ। पीपल गो विद देयर क्लोज फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप बिफोर दे गेट मैरिड एंड पार्टी देयर, प्ले गेम्स, बेसिकली मेक मेमोरीज। और आजकल ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड और चलन में है। शायद आप लोग भी प्लान कर ही रहे होंगे बैचलर्स पार्टी, अगर आपकी शादी होने वाली है तो। और एक बात तो है, प्लान करी हुई ट्रिप्स बहुत ही कम सक्सेसफुल होती है और अनप्लान ट्रिप्स ऑलवेज वर्क्स आउट। दोस्तों अगर आप भी अब तक किसी ट्रिप पर नहीं गए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो तुरंत वक्त निकाल लीजिए और घूम कर आइए। आपकी काम की सारी थकान और स्ट्रेस छू मंतर हो जाएगी। चलिए वक्त हो गया है कुछ धमाकेदार सॉन्ग प्ले करने का, तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु विद RJ आयुष।

दोस्तों चलो कुछ राज या बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ दोस्तों के साथ बिताए गए सफर के। पहला, आप अपने काम के प्रेशर से थोड़ा सा बच के निकल जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने क्लोज वन से मिलने की, और रिश्तों को या फिर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको सुलझाने की। यू शेयर गुड एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाले हैं जिंदगी में। भाई जब पीछे मुड़कर देखोगे यही मेमोरीज याद आने वाली है और कुछ आपको याद नहीं आने वाला। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप उन पुराने दिनों को दोबारा जीते हैं। दोस्तों वक्त तो वापस नहीं आता, लेकिन जो लम्हा उनके साथ बिताया गया है वो लम्हा आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं उस मोमेंट में रहकर। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद डिजिटल इंटरेक्शंस एंड फास्ट पेस्ड लाइफ्स, फ्रेंड्स ट्रिप्स ऑफर्स अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एवरीडे रूटीन्स। मुझे लग रहा है मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड कर दिया, तो भैया ज्यादा देर ना करें, अपने दोस्तों से मिलकर निकल जाए एक मंगलमय यात्रा पर। उम्मीद है आपने मजे किए होंगे आज के इस एपिसोड में, और मैं मिलूंगा आपसे एक और नए एपिसोड के साथ। ओके, योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए रेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों 60 और 70 के दशक के बाद संगीत प्रेमियों ने अगर किसी दौर के संगीत को पसंद किया है तो वो है 90 का दशक। एक और जहां पर कुमार सानू और उदित नारायण ने अपना डेरा जमाया हुआ था, वहीं पर अभिजीत, सोनू निगम और सुखविंदर सिंह और शान जैसे प्रतिभावान गायकों ने भी अपनी जगह बनाई थी। इसी दौर के अंत में एक और आवाज थी जिसने अपने दिलों को जीत लिया। ये वही आवाज है जिसके बारे में पिछले एक दो दिनों से हम बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ये वही आवाज है जिसने इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, इस पूरे संगीत इंडस्ट्री को हाल ही में अलविदा कहा है। उनका नाम है के, यानी कृष्ण कुमार कुन्नद। मैं जानती हूँ यादों की बारात में हम कुछ ऐसे भूले बिसरे गीत हमेशा ही आपको सुनाते हैं जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। पर आज वो भूले बिसरे नहीं बल्कि बिल्कुल ताजे ताजे गीत मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज का शो हम के को डेडिकेट कर रहे हैं। शुरू करती हूँ आज का शो और सुनाती हूँ पहला गाना।

सबसे पहले तो मैं पूरे वेणुगी की टीम की ओर केके को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। 1999 में केके का एल्बम आया पल, जिसके दो गीत यारो और प्यार के पल, इन दोनों गानों ने उस दौर के

सभी संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। फिर वो यंग जनरेशन हो या बड़े बूढ़े लोग हो, हर एक बंदे ने इन दो गानों को बहुत सराहा। इसके साथ साथ भी फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। इसकी सफलता ने तो बहुत ऊंचे झंडे गाड़े थे।

ये सक्सेस केके को आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, लगन और धीरज शामिल थी। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये मीठे सब्र का फल केके ने तो अनुभव किया ही, पर उसी के साथ साथ हम सभी को भी ये संगीतमय फल अनुभव करने को मिला। आगे बढ़ते हैं और सुनाती हूँ अगला गाना।

23 अगस्त 1970 को केके का जन्म दिल्ली के एक मलयाली हिंदू परिवार में हुआ था। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और कुछ महीने अपने संगीत के साथ साथ होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम भी किया। शायद ये वो दौर था जहाँ पर केके ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको नौकरी करनी है या संगीत में आगे बढ़ना है। पर कहते हैं ना, हमेशा दिल से जो चाहते हो वही होता है, और केके के साथ भी वही हुआ। अगला गाना सुनकर आप लौट कर आइए विनुध्वनि 90.4 FM KLE कनसूपर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा, और आज यादों की बारात में हम केके के कुछ प्यारे गाने सुन रहे हैं।

बचपन से ही के संगीत प्रेमी थे, गाते भी अच्छा थे, स्कूल के सभी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। उन्होंने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, पर उनकी माँ और नानी संगीत प्रेमी थी और उन्होंने अपने संगीत के शुरुआती पाठ अपने नानी से लिए, जो एक संगीत अध्यापिका थी। कहते हैं ना, जो संस्कार घर से मिलते हैं, जो संस्कार बचपन में मिलते हैं, वो जिंदगी भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और इन्हीं संस्कारों ने केके को सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया।

केलिस वेणुध्वनि 90.4 एफएम आप सुन रहे हैं यादों की बारात में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। 1994 में के मुंबई आए। यहां जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनकी पहचान हरिहरन जी के साथ हुई और उनकी मदद से वो लुइस बैक्स, लैंजले लेविस और रंजीत बारोट जैसे संगीत हस्तियों के कॉन्टैक्ट में आए। यूटीवी के एक एड जिंगल के साथ उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। इसके बाद जब उनकी आवाज को लोगों ने सराहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूटीवी के पहले जिंगल के बाद हिंदी भाषा के साथ साथ केके ने अन्य भाषाओं में भी बहुत सारे जिंगल्स गाए। 5-6 साल के दौर में उन्होंने 11 से अधिक भाषाओं में 3500 यानी 3500 से भी ज्यादा जिंगल्स में अपनी आवाज दी। इसी के साथ केके ने टीवी शोज में भी अपनी आवाज दी, जिसके कुछ पॉपुलर उदाहरण है शाकालाका बूम बूम, जस्ट मोहब्बत और हिप हिप हुर्रे। ये कुछ ऐसे शोज हैं जिनके टाइटल सॉन्ग्स हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद 1999 में वर्ल्ड कप जब चल रहा था, तब वर्ल्ड कप के लिए अपनी भारतीय टीम के लिए जोश ऑफ इंडिया इस गाने में भी केके ने अपनी आवाज दी थी। जब इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक 1998 में भारत में लॉन्च हुई, तब सोनी ने कई गायकों में से बेस्ट डेब्यू इंडिया के रूप में केके को चुना। 1999 में उनका एल्बम पल आया और हम दिल दे चुके सनम का गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और उसके बाद जो केके की फिल्मी गानों की जर्नी शुरू हुई वो कभी रुकी ही नहीं। सुनते हैं ये अगला गाना। आप सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु।

1999 से लेकर 2010-11 तक लगातार सभी हिंदी फिल्मों में केके ने अपनी आवाज दी, वो गाने गाते रहे और इस दौरान केके ने ढेर सारे पुरस्कार भी अपने नाम किए। झंकार बीट्स इस फिल्म का तू आशिकी है ये गाना जिसने केके को नेशनल अवार्ड प्रदान किया। केके ने ना सिर्फ फिल्मी गीत गाए, एल्बम्स भी गाए, टीवी शोज के टाइटल सॉन्ग्स भी गाए, जिंगल्स भी गाए, एक पाकिस्तानी टीवी शो का टाइटल सॉन्ग भी गाया, उसी के साथ इंटरनेशनल एल्बम्स में भी गानों में अपनी आवाज दी। जो मौका उनके सामने आता गाने का, वो हर एक मौके को बड़ी शिद्दत के साथ परफॉर्म करते थे। इसीलिए केके की आवाज़ हमारे दिल के बेहद करीब है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणी 90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथुमड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।